0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
6: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
6: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
7: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
8: द स्टेशन दैट प्लेज
9: फुट टैपिंग म्यूजिक।
10: हजार 97.1 FM।
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
11: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड.
2: इट्स कमर्शियल टाइम.
3: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिस

0: आल सर्विस के साथ रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066 9। मराया रेस्टोरेंट जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: नजर पर तक
1: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
3: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का.
3: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स.
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट.
3: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह.
4: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है.

0: आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट मूड नॉटिंगम डॉट कॉम 948 वुडप्रो रोड नॉटिंगम NG35QS।
1: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
0: टेस्ट भी वाइब भी।
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: Zabardast hits.
6: Music never sounded better.
2: Fizan 97.1 FM.
6: I love it.

0: छात्र वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
0: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: You are listening 97.1 FM.

0: commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: Get ready to move.
6: It's all about the beat.
7: Wow, FM.
8: Only Tune Super Hit Channel.
9: Fizz on 97.1 FM.
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays.
3: Foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM।
6: You are listening 97.1 FM।

0: दीजिए नई ड्रामा सीरियल खुश नसीबी 24 मार्च से रोजाना रात 7 बजे सिर्फ जियो पर।
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं खैर तो है
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी
2: ओहो मुबारकबाद बहुत जल्दी आ गया
1: सारी नसीब दी गल है मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी
2: उनका नाम ही बता दे हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है
1: AMH सॉलिसिटर्स और कौन ओ वधिया ने दोस्ताना माहौल तेज ते जल्दी कम कर दे रहे सोने ते स्वागा ये क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने
2: चले उनका पता भी बता दें आपको तो जुबानी याद होगा
1: हाँ जी क्यों नहीं नॉटिंगम रोड न्यू बेसफोर्ड नॉटिंगम
2: जबरदस्त मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए नंबर क्या है
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है 0115-671-3677 प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने मुफ्ता मशवरा लो जी
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7, 7BA. Large free car park available or call them on 0115-671-3677.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कढ़ाई की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Back to back, back to back, hip hop, hip hop, hip hop, hip hop, music, music, music, music, music.

करने वाले लाखों लोग हैं, हिंदू मुस्लिम वाला बार बार कानून तोड़ता।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए।

0: सर्विस के साथ रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रापता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से तमाम सुनती हुई समातों को खुश आमदीद। रेडियो फजा 97.1 FM एंड ऐप के लाइव स्टूडियो से। तो लिसनर्स, मैं हूँ आप सभी की होस्ट आरजे ज़ैनब फातिमा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो दीवा डायलॉग। ये शो ना सिर्फ आपका पसंदीदा है बल्कि पर्सनली मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यही एक जरिया है जिसके थ्रू मेरी और आपकी गपशप होती है और डेली बेसिस पर हमें डिफरेंट तरह की मालूमात के जराए मिलते हैं। सो वेल लिसनर्स, के सिंपल सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन उन सभी लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। सो अगर आपका शुमार भी होता है उन्हीं लिसनर्स में से जिन्होंने अभी अभी हमें

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट मूड नॉटिंगम डॉट कॉम 948 वुडप्रो रोड नॉटिंगम NG35QS।
1: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
0: टेस्ट भी वाइब भी।
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: Back to back, hip hop, music.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ, बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
0: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: Get ready to move.
5: It's all about the beats.
6: Wow,
7: you are listening 97.1 FM.
8: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
9: You are playing. We are playing. Faza 97.1 FM.

97.1 FM के लाइव शोर से जी मैं हूँ आपके आरजे दीवारन ऑन दी आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलूराज। खुश आमदीद करते हैं, वेलकम करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च आवाज़ आप सुन सलूराज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है जी को ठीक 2 बजे तक।

0: और बताइए क्या हाल चाल है, कैसा गुजरा आपका वीकेंड और अभी आने वाला दिन जो आ गया है मंडे, यानी कि मंडे आपका कैसा गुजरा है। आई नो कि वीकेंड के बाद दोबारा उस रूटीन पे आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके उस रूटीन को बेहतर करेंगे, यानी कि आज के दिन को मिलकर बनाएंगे बेहतर, ताकि आपका पूरा वीक अच्छे से अच्छा गुजरे। लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं प्रोग्राम में शामिल होने का तरीकेकार बड़ा ही आसान सा है, 01157100971। इस नंबर को कीजिएगा सेव, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहां से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा मुझे गूगल पर भी सुन सकते हैं, rediffuser.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा। वहां पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है, सवाल वो आपको वहां से मिल जाएगी। जो सिर्फ मेरा प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो 97.1 FM के नाम से। प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन मीडिया, आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर इंटरटेनमेंट। हमेशा की तरह प्रोग्राम में टॉपिक शामिल किए जाते हैं, फिर उस टॉपिक के वजह से डिस्कस स्टार्ट की जाती है, लेकिन अभी कुछ दिन हुए हैं कि मैं जो मैसेज प्रोग्राम में शामिल होते हैं उन्हीं को डिस्कस करती हूँ। सो वेल अभी जो है वो बड़े खूबसूरत सा एक टॉपिक मेरे दिमाग में है, लेकिन उससे पहले जो है हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज भी खूबसूरत ट्रैक के साथ करती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि क्यों ना बैकग्राउंड बीजीएम को ही चेंज कर लिया जाए। कल प्रोग्राम में शामिल हो कैसे ट्रैक शामिल करवाएगी जो पहले कभी भी हमारे प्रोग्राम में प्ले ना हुए हो, या फिर कोई प्रोग्राम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहे तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, मैं चुपके से उसके प्रोग्राम में शामिल कर दूंगी। बस कोशिश ये कीजिएगा कि इंटरनेट आपका अपना होना चाहिए। बताइएगा वीकेंड कैसा गुजरा। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि मेरी वीकेंड पे जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जो भी मैं करती हूँ, वो मैं आपको आके मंडे के दिन बताती हूँ, मंडे मल्टीज में शामिल करती हूँ वो बातें। अब वो ट्रैक जो मैंने वीकेंड पे सुने होते हैं, आप बताइएगा क्या आपने वीकेंड पे कौन सा ऐसा ट्रैक सबसे ज़्यादा सुना जो आपने सोचा कि मैं मंडे वाले दिन जो है वो प्रोग्राम में मैसेज करके प्रोग्राम में शामिल करवाऊँगा या करवाऊँगी। और मुझे लगता है कि बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा जो है ना वो हमें चेंज कर लेना चाहिए। अभी जो है वो प्रोग्राम में पंजाबी ट्रैक भी शामिल किए जाएंगे, सैड ट्रैक भी शामिल किए जाएंगे, फरमाइश अगर आएगी तो उनको शामिल भी करना पड़ेगा। अभी जो है वो मैं प्रोग्राम में एक खूबसूरत सा ट्रैक शामिल करना चाहूँगी, वही बात आ गई कि मुझे ट्रैक मिलते नहीं हैं। यही कर सकते हैं कि अभी जो है एक छोटा सा मैसेज प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, फिर इसके उस पार आपसे आके गपशप का सिलसिला जारी रखेंगे, आपके साथ मेरा साथ आपका साथ मेरा साथ रहेगा, ठीक हो ठीक 2 बजे तक, क्योंकि ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि वक्त से चलती है।
1: तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी।
0: सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

अभी वीकेंड पे मैंने जो ट्रैक सुने हैं ना, तो मेरा दिल है कि मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँ, क्योंकि मैं हर मंडे को आके आपके साथ वो शेयर करती हूँ। बट अभी जो मेरे पास फरमाइश आई है हम उसको पूरा कर देते हैं। मे भी शायद इसके सुबह मेरे आपके दरमियान एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का वक्त हो। तेरे नाल प्यार होया, स्टे ट्यून फॉर 107.1 FM एंड डैप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
8: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759315669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स, नाच आवाज आप सुन रहे हैं सुलराज की। सब मिलकर ओपन करेंगे इस खूबसूरत लंच बॉक्स को, जिसमें ना सिर्फ खाना होगा बल्कि बहुत सी ऐसी बातें छुपी होंगी जो आपने मुझ तक पहुँचानी है। प्रोग्राम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हाल हो चुकी थी। कमर्शियल ब्रेक के उस पार रही आपसे मुलाकात। अभी जो है ना, वो मेरे पास एक खूबसूरत सा मैसेज प्रोग्राम में शामिल करवाया गया, तो मैं उसको भी प्रोग्राम में शामिल कर ही दूं। अच्छा, प्रोग्राम में फरमाइशें भी शामिल होती हैं, साथ में मैसेज। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मतलब अगर मुझ पर मुझ तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाती है तो साथ ही जो टेक्स्ट किया जा करते हैं कि ये वाला चेक भी इसके बाद प्ले कर दीजिएगा। ओके ओके कर दूँगी। पर बात बड़ी ही प्यारी है कि मंजिल चाहे कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पांव के नीचे ही होते हैं। बिल्कुल ऐसी ही बात है, हमें अपनी मंजिल को पाने के लिए बस चलना पड़ेगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर रास्ता जो है ना वो ख़राब हो और जूता सही हो तो चलने में कोई दिक्कत नहीं होती। सो अगर रास्ता जो है वो ख़राब हो ना हो और जूता आपका ख़राब हो, तब चलने में मसला होता है। सो इस बात को समझने के लिए आपको दिमाग चाहिए होगा जो मेरे पास है आपके पास नहीं है। वल तो तंज़ो मज़ाक जारी रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो मेरे लिसनर हैं उनका दिमाग ना हो। नो भाई नो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वल बात बड़ी ही खूबसूरत थी कि मंजिल चाहे कितनी ही ऊँची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। बिल्कुल भाई, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मंजिल तक किस तरह पहुँचना चाहते हैं, किस तरह पहुँचेंगे। वही बात आ गई कि किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, कोई गोल्स आपका, कोई प्लान आपका हो, उसको सिर्फ अपने तक महदूद रखें, ना कि दूसरों के साथ भी शेयर करें। क्योंकि कभी कभार हम ऐसी गलती कर देते हैं कि हम जो सोच लेते हैं वो करने से पहले हम दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, दूसरों को बता देते हैं, और फिर ये चीज़ बाद में हमें नुकसान देती है। नुकसान कैसे देती है कि बहुत से लोग ज़िंदगी में ऐसे भी आते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, जो आपको बोलेंगे कि आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने माइंड को जो है वो इस तरह में नहीं ले गए इस चीज़ की तरफ। क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं तो आपका दिमाग पकड़ पकड़ कर वही बातें लेकर आता है। इसीलिए कहते हैं, सियाने कहते हैं कि जब आप किसी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहें ना, तो अपनी बातें सिर्फ अपने तक महदूद रखें, ना कि अपने बहन भाइयों को, किसी भी को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो बात अपने तक रहेगी वो ज़्यादा जल्दी कामयाब होगी। सवल रुकावटें जो है वो आती ही रहती हैं, तो हमें ये करना चाहिए, जब हम दूसरों के रास्तों को आसान कर देते हैं तो हमारी मंजिल हमें खुद ब खुद मिल जाती है। लेकिन उस मंजिल को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है। और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान शुरू से बड़ा इंटेलिजेंट है, नहीं, ज़िंदगी में कभी ना कभी एक ठोकर लगती है, तभी इंसान जो है वो अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। और वो ठोकर एक सबक होती है, ना कि वो ठोकर होती है। जब आपको वो सबक मिल जाता है तो आपको पता चल जाता है कि आपने ये वाली गलती आगे जाके दोबारा नहीं करनी।

उसी के साथ साथ अभी जो है वो मेरे पास फरमाइश एक मौजूद है, उसको सर्च कर लेते हैं क्योंकि मुझे गाने बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ये चीज़ जो है ना मुझे बहुत तंग करती है। ट्रैक को प्रोग्राम में शामिल करेंगे।

0: पतंजलि, पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।
1: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनतवी समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह सरराज की। और एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, एक छोटी सी फरमाइश पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद भी आया होगा। प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे मजीद इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर इंटरटेनमेंट, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूं और कुछ ऐसी बातें जो आप मुझ तक पहुंचाएंगे। तो लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको हमारे बताए गए नंबर पर हमें मैसेज करना होगा। इट्स मीन के आई मीन के स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर है 1157100971। इस खूबसूरत से नंबर को करना है सेव। सेव कर लेने के बाद व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कर दीजिएगा, ना सिर्फ मैसेज के थ्रू बल्कि आप लाइव कॉल के थ्रू भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ना कि सिर्फ मैसेज ही क्यों, आप अपनी आवाज़ भी हम तक पहुँचा सकते हैं जैसे हम अपनी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। ये भी बात आ गई ना कि ऊपर वाले ने जो है ना हमें एक बड़ी खूबसूरत सा वोकल बॉक्स दिया हुआ है ताकि हम अपनी आवाज़ को दुनिया में जो है वो फैलाएं। अगर आप अपनी आवाज़ का जादू इस आवाज़ की दुनिया में फैलाना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, सवाल आप हमारी मार्केटिंग टीम से रब्ता कर सकते हैं। उस पर आप उसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा radiofaza.co.au के आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर दीजिएगा। वहाँ पर आपको तमाम तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ऑल ऑफ यू सी के साथ साथ मेरे पास नंबर पर एक मुझे छोटी सी फरमाइश आई है कि इस ट्रैक के प्रोग्राम में शामिल कर दें, तो मैं ज़रूर कर दूंगी, क्यों नहीं करूंगी। और मेरे पास छोटे छोटे मैसेजेस भी रिसीव हुए हैं, तो मैं उनको भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि आज की जो डिस्कशन है वो बड़े मज़े की होने वाली है। सो आप जो है ना दिलों को थाम लीजिए, अगर कोई काम बहुत ज़रूरी है तो उसको ज़रा टाल दीजिए।

0: अब वही बात आ गया, जब मुझे ट्रैक्स ढूंढने पड़ते हैं तो मुझे बड़ी मौत पड़ जाती है, और मौत नहीं पड़ती इसमें कि मुझे ट्रैक मिलते नहीं है। एक तो मैं वीकेंड पे बहुत कुछ सोच के आती हूँ कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, फिर उसके बाद अब मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं फास्ट और फास्ट जो है ना वो काम करूँ, आपकी कोई फरमाइश मुझ तक पहुँचे, मैं उसको जल्दी से प्रोग्राम में शामिल करूँ, लेकिन वो कम्बख्त मिलने में इतनी देर लग जाती है ना कि क्या ही बताऊँ। खैर अभी जो है वो मुझे मिल गया है, सो अभी स्टे ट्यून्ड फॉर 7.1 FM एंड दैट
1: पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: Sarigama Karma, the perfect gift for your loved ones.
1: तू लव करती है ना मेरे से?
2: बस लव है तो सब है।

वे कमलिया मेरे नादान दिल, हम आ गए हैं आपके साथ एक बार फिर से। अभी दरअसल ना मैंने ये शेर व शायरी सुनी थी, तो मैंने कहा कि क्यों ना आके इसको प्रोग्राम शाम के, लेकिन सामने बैठी जो एक लड़की है मुझे हंसाई जा रही है, तो मेरी हंसी निकल गई। वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर से। खूबसूरत तो आप नहीं है, झूठ मत बोले। खूबसूरत इंसान को जो है ना उसके साथ जुड़ा रिश्ता बनाता है, ना कि इंसान खुद खूबसूरत होता है, उसके साथ जुड़ी खुशियाँ उसको खूबसूरत बनाती हैं, वो इंसान जिसके लिए बहुत ख़ास हो। सवाल अभी जो है ना वो तकरीबन कमर्शियल ब्रेक का भी वक्त हमारे दरमियान आ चुका है, लेकिन मेरे पास फरमाइशें जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती, और ये अच्छी बात है ना कि मेरे पास फरमाइशें ही फरमाइशें आती हैं। मैं जिसकी फरमाइशें घर वाले पूरे कर, मेरी फरमाइशें जिसकी फरमाइशें घर वाले पूरे करते हैं, और यहाँ पर मैं आपकी फरमाइशों को पूरा करती हूँ। पर अगला सेगमेंट हमारा होगा फर्स्ट एंड लास्ट सेगमेंट, मैं रखती हूँ म्यूज़िक का, ताकि उसमें जो है आपकी फरमाइशों को पूरा कर सकूँ। अब मैं बहुत से ट्रैक ऐसे शामिल करती हूँ जिनके बैकग्राउंड, जिनको मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक रख के यूज़ कर लेती हूँ, ताकि मैं आप तक अपनी आवाज़ भी पहुँचाती रहूँ। सवाल आइए सुनते हैं ज़ालिमा को, अरिजीत सिंह की आवाज़ शामिल कर चुकी हूँ। आपके दरमियान कहते हैं कि अरिजीत सिंह की आवाज़ को सुने तो वो इंसान भी याद आ जाता है जिससे आप कभी मिले ही ना हो, या फिर ऐसा फील होता है कि जैसे अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, पर पता नहीं ऐसा होता है या नहीं। अभी जो है वो प्रोग्राम में स्ट्राइक को शामिल कर दिया, इसके उस पर मेरा दरमान हाल होगी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, फिर कमर्शियल ब्रेक पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो स्टे ट्यून फॉर 107.1 FM एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पेशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: टर्न इट अप, रेडियो फाजा 97.1 FM।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आज आप सुन रहे हैं सरोराज की सोलो सी के साथ साथ। प्रोग्राम एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हाल हो चुकी थी, कमर्शियल ब्रेक के उस पर रही आपसे मुलाकात। अभी हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है और जो हमारा लास्ट सेगमेंट होता है वो म्यूजिक का होता है। तो वह अभी मेरे पास एक छोटी सी फरमाइश भी मौजूद है, तो आप कहते हैं तो मैं उसको प्रोग्राम में शामिल कर देती हूँ। अच्छा, मुझसे फरमाइश भी की गई थी कि पंजाबी ट्रैक्स भी प्रोग्राम में शामिल किए जाएँ, तो मैं उनको भी शामिल कर दूँगी। मैंने सोचा कि क्यों ना फिर सबसे पहले पंजाबी ट्रैक को शामिल कर दें, एक बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक जिसको मैं भी काफ़ी टाइम से सुन रही हूँ।

0: मोस्टली ये ट्रैक ज़्यादा जो है ना वो वेडिंग वगैरह पे प्ले होता है, लेकिन बहुत मज़े का ट्रैक है। सो उम्मीद करूँगी कि आप इसको सुनेंगे और आपको पसंद भी आएगा और डेफिनेटली आएगा, आप फरमाइश भी मेरे पास इसी इस ट्रैक की आ गई है। अच्छा मैं कहती हूँ ना कि जब मैं कोई ट्रैक प्रोग्राम में शामिल करती हूँ तो फिर उस तरह की फरमाइश मेरे पास आती है इस मीन के, जब मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ उस आगाज़ के टाइम जो ट्रैक प्ले होता है ना उसके बाद फिर जितनी भी फरमाइश आती है उससे मिलती जुलती ही आती है, यानी कि बीट्स को देख के म्यूज़िक को देख के किस तरह का प्ले करना है। सवाल आप मुझे बताइएगा अपने पसंद का ट्रैक, मैसेज कीजिएगा हमारे स्टूडियो के अलावा व्हाट्सएप नंबर पे। जैसे ही आपका मैसेज हमारे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा हम फौरन से चुपके से लेकर उसको प्रोग्राम में शामिल कर देंगे। या फिर कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें, कोई ट्रैक इसको डेडिकेट करना चाहें, या फिर कोई ट्रैक आप सरोज राज को डेडिकेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सवाल आइए चलते हैं ट्रैक की जानिब, यानी एक छोटी सी फरमाइश की जानिब। पंजाबी ट्रैक है और आपको पसंद भी आएगा, सुन के अच्छा लगेगा आपको ये ट्रैक। मेले नू चलिए आयो चलने इस ट्रैक की जानिब। एक तो मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती ज्यादा, सो बस चलते हैं इस ट्रैक की जानिब। इस ट्रैक इस पर आपसे मुलाकात, स्टे ट्यून फॉर 107.1 FM एंड दैट छोटा सा ट्रैक है, फोन से आपको मिलते हैं वापसी पे आकर।
1: तो छेदी चमचा कोई आ जाऊंगा
2: लड्डू देखा कि जबड़ जबड़ हाथे फड़ लेंगे आज।

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रापता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support.

खैर राग ले इस उम्मीद के साथ नहीं, यकीन के साथ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और जहां कहीं भी होंगे जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे, जिंदगी को निभा रहे होंगे। जीना कैसे और क्यों है जानते तो सभी हैं, कोशिश कोई कोई करता है, कोशिश वही करता है जिसको यकीन होता है उस जात के ऊपर जिसने इस जहां को बनाया और वो किसी ना किसी को मान रहा होता है, चाहे उसका कोई भी मजहब हो, कोई भी रिलीजन हो, कुछ सी भी मजहब तबके से उसका ताल्लुक हो, लेकिन उसको बिलीव हो। जब आपको किसी चीज़ पे बिलीव होता है तो डेफिनेटली आपको जीने का रीज़न मिल जाता है। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होने वाला है और आज हम इसी बिलीव के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझे कहते हैं राना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम नोटिंगम से। इस वक्त बराहे रास्त हम आपकी कानों में समातों के साथ आपके साथ हम कनेक्टेड हैं, कानों के अंदर कनेक्टेड हैं, या क्या कहना चाह रहा था मैं। बहरहाल जी, जो भी है, आप हमें सुन रहे हैं इस वक्त रेडियो फजा 97.1 एफएम से और आप हमारे साथ कनेक्टेड भी हो सकते हैं। और कनेक्टेड होने के लिए आपने करना कुछ यूं है, आपने हमारा रابطे का नंबर जो है वो डायल करना है 01157100971। इसके अलावा आप हमें कहां कहां ट्यून कर सकते हैं, आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो www.radiofaza.co.uk से जो है वो सुन सकते हैं। और आप इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अलावा, लेकिन बिल्कुल नहीं वो काम नहीं करना आपने जो ना करने वाला हो, जैसा कि जी आपने गाड़ी चलाते हुए मोबाइल को नहीं उठाना और हमसे रابطہ चाहकर भी नहीं करना, क्योंकि मोबाइल जो है वो गाड़ी चलाते हुए ये गैर एहतियाती काम हो जाता है मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने, आप लोगों की फिक्र भी तो है। बहरहाल जी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हम करने जा रहे हैं एक सूफियाना कलाम से। इस कलाम के उस पार आपसे दोबारा मुलाकात होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बड़ा एनर्जेटिक प्रोग्राम आज का होने वाला है, बहुत सारी पॉजिटिव जो है वो चीज़ें आपको सुनने को और सीखने को मिलेंगी और डेफिनेटली आप लोगों की वजह से मुझे भी। तो आपने कहीं नहीं जाना, आपने मेरे साथ रहना है। मुझे कहते हैं राना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM।

0: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
1: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा
2: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

97.1 FM के साथ हर आवाज एक नई कहानी का आगाज।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंगआउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: You are saying. We are playing
4: Fazan 97.1 FM.
8: The station with the
9: best music.
10: I love the music.
11: Best music.
12: Fazan 97.1 FM.

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं राना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM नोटिंगम से इस वक्त लाइव। और आज हमारा जो है वो सॉन्ग से पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक होने वाला है और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कशन आज के शो के अंदर होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू पर जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है हमारी सोसाइटी के अंदर और उसके ऊपर जो है बहुत सारे लोग बात भी नहीं करते और जो उस सिचुएशन के अंदर ढल चुके हैं शायद वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम किस चीज़ के अंदर जो है वो फंस चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में और आज हम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन को। बिल्कुल जी,

बिल्कुल जी, ये कॉमन इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि हमारे साथ चल क्या रहा है, वो क्या रहा है, और ये जो चीज़ें हैं ये महसूस इस तरह से होती है कि कभी कभार इंसान जो है वो महसूस करता है कि उसका जो दिल है वो उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा, और उसका दिमाग जो है कुछ और चाहता है और दिल जो है वो कुछ और चाहता है। और कभी कभी इस तरह भी होता है कि इंसान जो है वो बिना किसी वजह के ऐसे ही दिल उदास हो जाता है, और कभी कभी इस तरह की सिचुएशन होती है कि इंसान का किसी शख्स से भी बात करने का दिल नहीं करता, और कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं दूर जो है वो निकल जाना चाहिए। उसके अलावा जो है वो काम, उसकी भी टेंशन होती है, फिर या फाइनेंशियली जो है वो सिचुएशन इंसान की इस तरह हो, या फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, या फैमिली रिलेशनशिप, स्टडीज़, फ्यूचर की टेंशन, ये सब कुछ मिल मिलाकर जो दिमाग है उसको थका देते हैं, और फिर उसके बाद हमें क्या फील होता है। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्रेस जो है वो और जो इमोशनली इमोशनली जो प्रेशर है वो इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन हमें जो है हमेशा यही नहीं कहना चाहिए कि भाई ये बस पॉजिटिव सोचते रहो, और इसी चीज़ के ऊपर नहीं रहना चाहिए, और ना ही आज हम उन लोगों को जज करेंगे जो इस सिचुएशन के अंदर है। डेफिनेटली हम उस सोल्यूशन की तरफ जाएंगे जो इस चीज़ का सोल्यूशन प्रॉपर होना चाहिए, और जो जो चीज़ हमें इस चीज़ के अंदर फ़ायदा दे। बिल्कुल जी, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो स्ट्रेस है वो होता क्या है, डिप्रेशन और सैडनेस में क्या डिफरेंस है, और स्ट्रेस जो है उसकी कॉमन वजह क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक सॉन्ग लगाने जा रहा हूँ, शुभ का मूव 360। आप इस गाने को सुनिए, इस गाने के उस पार हम दोबारा से इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे, क्योंकि जी गाने का हल्का फुल्का जो तड़का है वो तो लाजमी है ताकि माहौल बना रहे। तो मिलते हैं इस गाने के उस पार।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं रानार स्लानली और आप सुन रहे हैं रेडियो फदा 97.1 FM। अभी आप सुन रहे थे शुभ का गाना, बड़ा खूबसूरत गाना था शुभ का, ये जो मूव 360 है। लेकिन गाने की ड्यूरेशन जो है वो मैं देख रहा था 2:40 थी, और पहले जो है इस तरह हुआ करता था कि जी गाना जब तक 4 मिनट का नहीं हुआ करता था तो प्रोडक्शन हाउस जो उसको प्रोड्यूस ही नहीं था करता, उस गाने को रिलीज़ भी नहीं थे करते, उस गाने को बनाते ही नहीं थे। ये कॉन्सेप्ट पाया जाता था कि जी गाना जो है कम से कम 4 मिनट का होगा, फिर होते होते 4:30 पे आया, फिर 4 मिनट पे आया, और अब मैं देख रहा था कि 4:30 से 3 मिनट, फिर 3 मिनट से अब 2:40 पे आ गया भाई। और जिस तरह गानों की जो ड्यूरेशन है वो कम होती जा रही है, इसी तरह से गानों की जो लाइफ है वो भी कम होती जा रही है। जैसे पहले गाने आते थे, फिर गाना आने के बाद वो काफ़ी टाइम उस गाने की पीक, उस गाने की हाइप रहती थी, और फिर काफ़ी टाइम तक वो गाना चलता रहता था, सर्कुलेट रहता था और फॉर यू पे रहता था। लेकिन अब आके जो है वो जी गाना आता है और एक हफ्ते के बाद दोबारा से नए गाने की फरमाइश होती है और फिर नया गाना भी आ जाता है, और पुराने गाने का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाता है। लोग कहते हैं जी अब कुछ थोड़ा सा भी पुराना गाना हो, मतलब कि 6 मंथ 1 ईयर ठीक है पुराना गाना हो, तो कहते हैं जी अब ओल्ड फैशन में चला गया। तो ये इंडस्ट्री जो है वो इस तरह से चेंज हो गई है, क्योंकि मैं इस फील्ड में रहा हूँ तो इसलिए मैंने जब गाना देखा तो गाने के देखने के बाद मेरा थोड़ा सा माइंड जो है वो उस तरफ चला गया, पुरानी यादों के अंदर। बहरहाल जी, हम जो अपना टॉपिक है उसके ऊपर से बिल्कुल मूव आउट नहीं होंगे, क्योंकि ये बड़ी लंबी डिस्कशन है। मगर गानों की इंडस्ट्री के ऊपर बात करना स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, और फिर उसी के ऊपर बात होती रहेगी, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा हेल्थी है और बड़ा पॉजिटिव जो है वो टॉपिक है, बड़ा फ़ायदेमंद टॉपिक है। तो मैं चाहूँगा कि हम उस टॉपिक के ऊपर ही रहें, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है उसके ऊपर, स्ट्रेस और डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है और इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, गाने से पहले हम जब बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि जी स्ट्रेस जो है वो बेसिकली होती क्या है और स्ट्रेस और सैडनेस में क्या फ़र्क है। क्या आप लोगों को लगता है कि इसके अंदर कोई फ़र्क है, या आप सैडनेस जो है, कुछ लोग उदास होते हैं और उसको भी वो डिप्रेशन ही या स्ट्रेस ही समझ लेते हैं, लेकिन सैडनेस जो है वो और चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रेस की जो कॉमन वजह हैं वो क्या होती हैं उसको भी हम डेफिनेटली आज डिस्कस करेंगे। आप भी मुझे बता सकते हैं कि जो स्ट्रेस है उसकी कॉमन वजह जो है वो क्या होती है, अपने माइंड को काम कैसे किया जाए, अपने दिमाग को ठंडा जो है करने के क्या तरीके होते हैं, आप किस तरह से अपने दिमाग को ठंडा रखते हैं, शांत रखते हैं, और उसके बाद जी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो स्लीपिंग, सोना। कितने ही लोगों का ये फेवरेट काम है जी सोना, और सोना जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो जिनको नींद ही नहीं आती, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, ये भी स्ट्रेस का ही एक हिस्सा होता है। और सोशल मीडिया जो है स्ट्रेस को किस तरह से इंक्रीज़ कर रहा है ये भी आप बता सकते हैं, और इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जी सबसे बढ़ के सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आज का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर, आज का जो हमारा शो है जिसके ऊपर हमारा शो ही चल रहा है, कि वो ये है कि जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि कब हमें जो है वो चाहिए कि हम प्रोफेशनली हेल्प लें किसी प्रोफेशनल बंदे से जो कि हमारी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और हमें बताए वाकई हम इस सिचुएशन के अंदर से गुजर रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जिनको आइडिया ही नहीं होता, रियलाइज़ ही नहीं होता कि हम सिचुएशन जो है हमारे अंदर क्या चल रही है। तो डेफिनेटली आज हम बात करेंगे और इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है, कौन से ऐसे कॉमन जो है वो पॉइंट्स हैं जो आपके अंदर पाए जा रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनली जो है वो कंसल्टेंट की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, एक ट्रैक है, इस ट्रैक के उस पार हम ये डिस्कस करेंगे। तो आपने करना कुछ नहीं, आपने कहीं नहीं जाना, आपने हमारे साथ रहना है। इस गाने के उस पार दोबारा से मुलाकात होगी और हम डेफिनेटली आज जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर हम रहेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और चीज़ों को हम पॉइंट आउट करेंगे और चेक करते हैं जी कौन कौन से लोग हैं जो आज उदास हैं और कौन कौन से लोग जो हैं वो स्ट्रेस में हैं, कौन कौन से लोग डिप्रेशन में हैं, किन किन लोगों को ज़रूरत है इलाज की, मुआलज की और कंसल्टेंसी की।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं रानार्स लानली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम नोटिंगम से इस वक्त बराह रास्त। और आज हम बात करें, हमारा हेल्थी टॉपिक है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। टेंशन माका हुआ पश्तों में कहते हैं जी, टेंशन ना लेने को, कि आपने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी और डिप्रेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना। स्ट्रेस जो होता है जी, बेसिकली यही जाके डिप्रेस बंदे को कर देता है और इसी से ही जो है वो सिचुएशन ख़राब होती है। डेफिनेटली एग्जाम आ रहे हैं तो बंदे को क्या होता है जी, स्ट्रेस होता है। जॉब का प्रेशर हो तो स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो, प्रॉब्लम हो, तब भी स्ट्रेस होती है, और फैमिली इश्यूज हो डेफिनेटली तब भी स्ट्रेस होता है, और अगर रिलेशनशिप का चक्कर हो तब भी स्ट्रेस ही होती है, और अगर फ्यूचर की आपको फिक्र हो तब भी स्ट्रेस ही होती है। लेकिन ये कब जाके जो है वो डिप्रेशन में चेंज होती है, हम आज उसके ऊपर बात कर रहे हैं। और ये भी देखना जरूरी है कि किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है और किस तरह से हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारी जो स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस का ये लेवल हो चुका है कि अब हम कहीं ना कहीं उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां हमें ज़रूरत है किसी ना किसी एहतियात की, किसी ना किसी अपने आप को कंट्रोल करने की। किन चीज़ों से कंट्रोल करने की? डेफिनेटली जी, उन चीज़ों से कंट्रोल करने की जो चीज़ें स्ट्रेस की वजह बनती हैं और जहाँ पे हमें लगता है कि जी ये चीज़ मुझे बार बार ना कर रही है। हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ना कुछ ऐसे लोग या कुछ ना कुछ ऐसी वजूहत होती हैं जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस का शिकार होता है। और कुछ लोग होते हैं जिनकी अर्ली मॉर्निंग जब उनकी आँख खुलती है तो उनकी स्ट्रेस स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोग होते हैं जिनकी दिन के टाइम ड्यूटी के जॉब के दौरान जो है वो स्ट्रेस उनको मिलता है, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कि शाम के टाइम जिनको स्ट्रेस मिलता है फैमिली की तरफ से या कुछ इस तरह के इश्यूज। कुछ लोग इस तरह के होते हैं आपके इर्द गिर्द जो माहौल को ख़राब कर देते हैं, उनकी तरफ से भी स्ट्रेस मिलती है। तो ये चीज़ें जानना बड़ी ज़रूरी है। डेफिनेटली ये तो आप खुद ही अपने अंदर देख सकते हैं कि हमारे ऐसे इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, कौन से अवामिल हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रेस में मुब्तला कर रही हैं। और जी, बहुत सारे ऐसे कॉमन साइन होते हैं जो इंसान को मिल रहे होते हैं स्ट्रेस के, वो भी आज हम बात करेंगे उनके ऊपर भी कि जी वो कौन से ऐसे साइन होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें स्ट्रेस के करीब लेकर जा रही हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बता देती हैं कि हम इस वक्त डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं या हमारे अंदर स्ट्रेस जो है वो अपनी पीक पर है। उनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर वक्त इंसान जो है टेंशन में रहे, चिड़चिड़ापन जो होता है इंसान को, इरिटेशन हो रही होती है हर चीज़ से, और बहुत जल्दी जो है गुस्सा आना शुरू हो जाए, ये भी एक स्ट्रेस का जो है वो साइन है। फिर कहीं ना कहीं स्ट्रेस से ये कन्वर्ट कर देता है इंसान को डिप्रेशन की तरफ। और उसके अलावा जी, नींद का ख़राब होना, और नींद का जो ख़राब होना है ये भी कहीं ना कहीं इंसान को प्रॉब्लमेटिक सीन की तरफ लेकर चलता है। और सर का दर्द जो है, उसके अलावा बॉडी जो है वो आपके कंट्रोल में ना रहे, इंसान का जो है वो जिस्म, इंसान की जो मूवमेंट्स हैं वो इंसान उसके ऊपर काबू ना कर सके। समटाइम हम कहते हैं कि जी पता नहीं इंसान को कि क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो गया या हमारे साथ क्या हो रहा है, या हम किसी को देखते हैं तभी हमें आइडिया नहीं होता कि हमारे साथ जो है वो क्या हो रहा है और उसके बंदे के साथ क्या हो गया, क्या हो रहा है। ये भी जो चीज़ है ये इंसान को, हमें डेफिनेटली आगे पीछे जो है वो नज़र रखनी चाहिए इर्द गिर्द उन लोगों पर जो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हों, क्योंकि इंसान जब डिप्रेशन के अंदर होता है तो डेफिनेटली उसको आइडिया ही नहीं होता, उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि मैं डिप्रेशन के अंदर हूँ या डिप्रेशन का शिकार हो चुका हूँ। बहरहाल जी, एक ट्रैक है, इस ट्रैक के उस पार आपको हम और खूबसूरत सी बातें बताएंगे और बताएंगे कि जी स्ट्रेस को किस तरह से दूर करना है। डेफिनेटली अब हमारा जो ये टॉपिक है वो क्लोजिंग की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो वक्त है वो भी बहुत कम रह गया है, और हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर ही आपको स्ट्रेस को दूर करने के, या फिर स्ट्रेस को जो है वो रिलीज़ करने के तरीके जो है वो समझाएँ और उसके ऊपर हम बात करें। तो गाना है अरिजीत सिंह का, इस ट्रैक के उस पार हम आपसे मुलाकात करते हैं, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो 97.1 FM।

वेल जी वेलकम बैक वंस अगेन, मुझे कहते हैं राना अरसलान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम। टाइम हुआ चाहता है जी 3:31 का और हमारा और आपका साथ जो है बस कुछ ही लम्हों का है और इन लम्हों को हम शानदार बनाने वाले हैं क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा हेल्थी है। हम आज अपने अंदर कुछ चेंजिंग महसूस अगर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आज हम उसको कैच करेंगे और उसको उस चेंजिंग को अगर तो वो पॉजिटिव चेंजिंग है फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नेगेटिव वाइब्स है, नेगेटिव चेंजिंग है तो उसको आज हम कंट्रोल करने की जो है वो बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था वो डेफिनेटली अगर आप लोगों ने सुना कि वो सैडनेस और डिप्रेशन के हवाले से था, लेकिन जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया तो उनको मैं बताता चलूँ हमारा जो आज का टॉपिक है वो डिप्रेशन के हवाले से है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डिप्रेशन में लेकर चली जाती हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सैडनेस फील करवाती हैं। सैडनेस जो इंसान की ज़िंदगी का कॉमन हिस्सा है, लेकिन सैडनेस जो है वो बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं वो जब उदास होते हैं वो उसी चीज़ को जो है वो डिप्रेशन समझ लेते हैं और फिर उस चीज़ के ऊपर सोचते रहना और कंटिन्यूसली सोचते रहने से आपको पता ही है क्या होता है, इंसान की तबीयत खराब होती है। बहरहाल जी, हर इंसान जो है वो उसकी ज़िंदगी में सैडनेस आती है, ये बिल्कुल हकीकत है और अटल हकीकत है कि ऐसा कोई भी शख्स नहीं जिसकी ज़िंदगी में सैडनेस ना आई हो। और ये जो है सैडनेस आना, ये किसी भी अपने शख्स की किसी भी ऐसे शख्स से डिसएग्रीमेंट हो जाना कि मतलब उससे आपको जो तवक्कुल ना हो वो बंदा आपको वो कह दे, वो भी जो है वो सैडनेस का सबब बन सकती है। रिलेशनशिप का ख़त्म हो जाना, किसी अपने को जो है वो अपने से दूर हो जाना, क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी अपने का आपसे दूर हो जाना जो है वो भी डेफिनेटली सैडनेस का जो है वो सबब बनता है। और ये नेचुरली है कि हम उदास हो जाते हैं या किसी ऐसी जगह से हमें नाकामी मिल जाए जहाँ से हमने तवक्का ना की हो, कभी एग्ज़ाम्स में जो है वो हम फेल हो जाएं तब भी हमें जो है वो ऐसा फील होता है कि हमारा जो है वो हम सैडनेस फील करते हैं। उसके अलावा कुछ हमारे प्लान होते हैं जो प्लान कामयाब नहीं होते या फुलफिल नहीं हो पाते तो उसके बाद हमें वो उदासी हो जाती है। लेकिन अगर ये उदासी, ये परेशानी एक लंबे वक्त तक आपके साथ जो है वो जुड़ी रहे और काफ़ी टाइम तक जो है ये आपका साथ ना दे, मतलब के साथ जुड़ी रहे और आपको हिलने ना दे, मतलब आपका माइंड जो है वो एक ही जगह पर अड़ जाए कि भाई रुक जाए, वो उसी चीज़ को बार बार सोचते रहना, जैसे किसी एग्ज़ाम में आपका फेल हो जाना फिर उसी चीज़ को बार बार रिवाइज रिपीट करते रहना कि भाई मैं वहाँ फेल हो गया था। ये जो चीज़ है ये बड़ा एक कॉमन इशू है कि आप उस सैडनेस को जो है वो ख़त्म ही नहीं करना चाह रहे या ख़त्म ही नहीं कर पा रहे, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डिप्रेशन का शिकार वो आपको कर रही है वो चीज़। और ये जो चीज़ होती है ये इंसान को जो पहले चीज़ें उसको पसंद आती हैं वो कहीं ना कहीं ये ख़त्म कर देती है। जैसे हमारा एक दोस्त था, उसने प्लान किया कहीं घूमने का, ट्रैवल करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई और उसका टिकट जो है वो ज़ाया हो गया, तो वो उस चीज़ को लेके इतना उदास हुआ कि उसने उसके बाद घूमने का जो है प्लान ही कभी नहीं बनाया। और आज तक हम उस शख्स को उस चीज़ से निकालने की कोशिश में मुबतला हैं कि भाई वो निकल आए उस जगह से, उस चीज़ से कि जिस चीज़ को उसने स्ट्रेस लिया हुआ है। लेकिन ये जी बड़ा मुश्किल होता है, इंसान के कुछ इस तरह के प्लान होते हैं, कुछ इस तरह के टूर होते हैं जहाँ पर वो जाना चाहता है या कुछ करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, तो डेफिनेटली वो चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है। और अगर वो दुख इंसान का साथ ना छोड़े तो वो कहीं ना कहीं जाके स्ट्रेस में, डिप्रेशन में मुबला हो जाता है। बहरहाल जी, हमारे सामने एक सॉन्ग है परमेश वर्मा का और देखी जा, ये एक नया गाना है और इस गाने को सुनते हैं, इस गाने के उस पार आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, जिनको कंट्रोल करने से आप एक हेल्थी और फिटनेस वाली लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन। मुझे कहते हैं रानार स्लान अली और आप सुन रहे हैं रेडियो पता 97.1 FM। अभी आप सुन रहे थे देखी जा पर छेड़ी ना, परमेश वर्मा का गाना था। और इस गाने के अंदर बड़ी खूबसूरत खूबसूरत किस्म की जदीद गाड़ियाँ, न्यू ब्रांड्स की, और गाड़ियों के कौन कौन फ़ैन हैं, कौन कौन सी गाड़ी आपको पसंद है। वैसे गाड़ियों के हवाले से हर किसी की अपनी अपनी कलेक्शन होती है, लेकिन आजकल जो है वो गाड़ियों में ज़्यादातर लोग कौन सी गाड़ियां पसंद करें ये लाजमी बताइएगा। पहले एक ट्रेंड चला था डबल डोर का, तो वो अब मेरे ख्याल से कम होता होता, एक ट्रेंड था लेडी जीप का, वो भी अब कम होता होता ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। आजकल चल रहे हैं डाले भाई, चाहे वो वीगो हो या रिवो हो, कोई भी डाला हो, इसके ऊपर भी गाने बने हुए हैं। डाला मैंने उस दिन देखा है, गाना था रिवो का, रिवो के ऊपर जो है वो गाना बना हुआ था रिवो डाले के ऊपर। बहरहाल जी, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, और हमारा जो टॉपिक है हम उसके ऊपर दोबारा से आते हैं। हमारा जो टॉपिक था वो आज स्ट्रेस और डिप्रेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे। डेफिनेटली जो डिप्रेशन है वो स्ट्रेस से ही बनता है, और स्ट्रेस जो है वो किस तरह से बनता है, कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें स्ट्रेस में लेकर जाती हैं, हम उसके ऊपर बात कर रहे थे। जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है तो हम उनको बताते चलें, आज का जो हमारा टॉपिक स्ट्रेस और डिप्रेशन के हवाले से, आप हमारे साथ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि ऐसे कौन से अवामिल हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंसान को डिप्रेशन में लेकर जाती हैं, और अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप करते हैं। तो हमारे साथ रब्ता करने के लिए आपने कुछ यूँ करना है, मोबाइल फ़ोन उठा लेना है, 01157100971 हमारा रब्ते का नंबर है, इसको आपने डायल करना है, और इसके थ्रू हमारे साथ आप इन टच हो सकते हैं। और आप हमें बता सकते हैं जी, आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे पहला काम आप कौन सा करते हैं। मैं वैसे अपनी बात बताऊं तो मैं तो म्यूज़िक सुनता हूं, और म्यूज़िक जो है मेरे माइंड को कन्वर्ट कर देता है। हमारे जहन के अंदर बहुत सारी सोचें होती हैं, यकीन कीजिए, लेकिन जैसे ही मैं म्यूज़िक को सुनता हूं तो गाना जो है वो मेरे दिमाग को एकदम से कन्वर्ट कर देता है भाई, हर चीज़ से डाइवर्ट करके वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या म्यूज़िक सुनते हैं जब आप स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, या फिर आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड जो है उससे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं। ये भी एक बड़ा अच्छा और बड़ा हेल्थी जो है वो तरीकाकार है कि आप किसी अपने करीबी दोस्त के साथ अपनी वो बातें शेयर कर लें जो आपके साथ आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि जी आपको जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा किस चीज़ का है, पैसों का है, फैमिली का है, या फिर रिलेशनशिप का, या फिर कैरियर का, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ज़्यादा स्ट्रेस में लेकर जाती है, और उसका क्या सलूशन हो सकता है।

भरत जी, एक ट्रैक है हमारे सामने, उस ट्रैक के उस पार हम आपको आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम प्रोग्राम को डेफिनेटली क्लोजिंग की तरफ लेकर चलेंगे, क्योंकि टाइम हुआ चाहता है जी 3:42 का, और आपका और मेरा साथ चंद ही लम्हों का रह गया है। तो इस ट्रैक के उस पार म्यूज़िक जो है डेफिनेटली ये स्ट्रेस को दूर करता है, तो इसलिए हम म्यूज़िक को साथ साथ शामिल कर रहे हैं और लेकर चल रहे हैं साथ साथ ट्रैक भी। तो इस ट्रैक के उस पार आपसे हम बात करेंगे कि स्ट्रेस जो है इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, किस तरह से इसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। इस ट्रैक के उस पार कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा।

वेल जी, वेलकम बैक वंस अगेन, रेडी फॉर द नॉटिंघम से लाइव आपके मातों की नजर। मुझे कहते हैं अरसलान अली और आप सुन रहे हैं बिल्कुल जी रेडियो फ़ज़ा। और आज हमारा जो टॉपिक था उसकी बहुत ही अहम जो पार्ट है, बहुत अहम सेगमेंट है, वो अब आपकी नज़र, बल्कि आपकी समातों की नज़र। बिल्कुल जी, हम बात कर रहे थे स्ट्रेस को दूर करने के हवाले से, और स्ट्रेस जो है वो हमारे दिमागों के अंदर किस तरह से हमें खोखला करती जा रही है, किस स्पीड के साथ, और किस तरह से स्ट्रेस जो है वो डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है, आज हमने उसके ऊपर भी बात की। बहरहाल जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जी हम इस स्ट्रेस को दूर किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जी इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं, इश्यूज़ बताता भी हर कोई है, लेकिन उसका सलूशन जो है वो किसी के पास नहीं होता। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आज का जो हमारा ये मेन पार्ट है इसके अंदर हम स्ट्रेस को दूर करने के जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ जाएं, उस स्ट्रेस को दूर करने के जो पार्ट्स हैं, जो स्ट्रेस को दूर करने की चीज़ें हैं, उसको हम सामने रखें। हमारे साथ हमेशा की तरह अलियान हमारे दोस्त हमारे जो है वो सुन रहे हैं हमें दुबई से, और उन्होंने लिखा है कि जी अगर स्लीपिंग की रूटीन बेस्ट हो आपकी तो आपको स्ट्रेस नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अहम बात है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इस वजह से स्ट्रेस के अंदर हैं कि उनकी नींद पूरी नहीं होती, वो अच्छे से नींद नहीं ले पाते।

क्योंकि जी ये दुबई के अंदर है, दुबई की लाइफ जो है वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, ये एक परदेसी हैं और रिजक कमाने की खातिर ये दुबई के अंदर मौजूद हैं, तो वहाँ पर जो स्लीपिंग की रूटीन है इनकी, इनके मुताबिक वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये वहाँ पर एज अ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो इनकी जो रूटीन है वो कहते हैं कि जी इस तरह की है कि कभी हम दिन में सोते हैं और कभी रात में। ये स्ट्रेस का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न होता है, हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जी आप अगर एक ही रूटीन में नहीं सो रहे, यानी कि अगर आप डेली रात को नहीं सो रहे, आप कभी दिन में सो रहे हैं कभी रात को सो रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है आपके दिमाग को, एक दिमाग को चेन नहीं मिलती, एक जो सर्कल है वो उससे आउट हो जाता है और दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं नॉक करने लग जाता है कि भाई ये सोने का टाइम है, लेकिन आप उसमें सो नहीं रहे होते और आप फिर आप अपनी रूटीन इस तरह से ख़राब करते हैं कि जब आपने सोने को नहीं मिलेगा दिमाग को रिलैक्स करने के लिए, आप कॉफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। फिर आप सोने से पहले अगर स्क्रीन का टाइम आपका बहुत ज़्यादा है उसको कम करना चाहिए, ये भी कुछ ऐसी रीजंस हैं जो कि आपको प्रॉब्लम फील करवाते हैं। फिर उसके अलावा वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है जहाँ पर आप स्लीपिंग ले रहे हैं, वहाँ पर अगर आपको इन्वायरमेंट उस तरह का नहीं मिल रहा जो रिलैक्सेशन आपको दे, कहीं ना कहीं वो भी जाके एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है स्ट्रेस का। फिर उसके अलावा जी फिज़िकल एक्टिविटीज़, मुझे जब भी दुबई याद आता है तो वहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर ऐसी जगह पर हैं, ऐसे माहौल के अंदर हैं जहाँ पर आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने को नहीं मिलती, तो आप कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन का, स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिलता, आपको टाइम निकालना चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए जो कि आपको हेल्थी रखें, आपको फिट रखें आपकी बॉडी को। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे नज़दीक, मैं जिसके ऊपर बिलीव करता हूँ, जिसके ऊपर मैं एग्री करता हूँ, जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ, वो ये है कि जी आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको लिखना स्टार्ट करें। बिलीव मी, आप अगर ये काम कर लेंगे आपको 100 किस्म की परेशानियाँ होंगी, 100 आपको इश्यूज़ होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, और अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनको लिखते हैं तो यकीन कीजिए कि वो लिखते हुए ही आपकी 100 से काम होंगे, कहीं ना कहीं वो 50-60% रह जाएंगी। फिर उसके अलावा जब आप उसको लिख लेते हैं तो यकीन कीजिए कहीं ना कहीं आपको आइडिया होता है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, और इसको सॉल्व किस तरह से करना है वो फिर आप सोचते हैं। फिर उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जी आप किसी ट्रस्टेड बंदे से बात करें, उससे अपना इशू जो है वो डिस्कस करें, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये जो है कहीं ना कहीं जाके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। उसके अलावा आप अगर हेल्थी हैं, आप फिट हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे के रखे, तो आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखना है, आपका जो सोशल सर्कल है, आपका जो सर्कल है जहाँ पर आप रहते हैं, जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जिन लोगों के साथ आपका बैठना है, आप अगर उनमें से किसी शख्स को उदास देखें, परेशान देखें, तो यकीन कीजिए उसका हाथ थाम लीजिए और उसको वो फील करवाइए कि आप उसके हमदर्द हैं। क्योंकि जी वो लोग जो होते हैं दुखों के मारे हुए, जिनका कोई नहीं होता, तो डेफिनेटली उनको सहारे की ज़रूरत होती है। उनका ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे भी ख्याल रखने की ज़रूरत है अपनी, अपने इर्द गिर्द के लोगों की। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है हमें कहीं ना कहीं रियलाइज़ करवाती है कि हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे तो ये सोसाइटी जो है एक हेल्थी सोसाइटी, एक हेल्थी मुआशरा जो है वो बिल्ड करेगा और कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ होंगी। क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि जब आप किसी के लिए आसानी पैदा करते हैं तो आपके लिए भी कहीं ना कहीं से आसानी की जा रही होती है। इसके साथ ही मुझे अपने मेज़बान राना अरसलान अली को इजाज़त दीजिए। आफ्टरनून मिक्स में दोबारा से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ, एक हेल्थी गुफ्तगू के साथ। होप सो आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और आपका, आपके इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, आपका और मेरा अल्लाह निगेबान।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: The station with the best.

सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सब

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mundi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bayesford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम 972ET
2: Peshawari Dera.
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
6: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
7: हजार 97.1 FM।
8: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन।
9: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: इट्स कमर्शियल टाइम.
4: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 Alfred Denton Road, Nottingham, या अभी राब्ता करें 07593150669. मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा.
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
8: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station.
12: That plays
13: foot tapping music.
14: Huzzah 97.1 FM.
15: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM.
16: You are listening 97.1 FM.

You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
5: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
6: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
7: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
6: सलासा ट्यूशन सेंटर?
7: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है.
6: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
7: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
6: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ.
8: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
9: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
10: This is a public service announcement.
11: Everybody. The station.
12: That plays
13: foot tapping music.
14: You are listening 97.1 FM.
15: सच है प्रिया, सब कहते हैं मैंने तुझको भी.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: 옆을 English or Arabic. So, 순대를 위해
1: Fazan 97.1 FM.
0: 더 가야 나? Come on.
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Huzzah 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: It's commercial time.
1: ओखाना कराय के खुशबू गोश्त की जायका और पिशावर का मेहमान नवाजी।
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौथी गम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज चनमारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
2: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
3: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम NG72ET
2: पिशावरी डेरा।
4: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
5: टर्न इट अप रेडियो फाजा 97.1 FM।

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी। स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazza 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM।
13: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: बिन कुछ कहे
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916 8231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: आपके दिल की धड़कन, Radio Faza 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: it's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open day-

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.